वाले सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरे नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब

मुँह काले उठ जाहे महला पहला, जाड़ो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरे, नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी। हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है, हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है। जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है, जिन सेवया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटों वारिया, जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है। जिन सेवया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटों वारिया, जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, वडभागे हाँ जिथे आप जी ने शब्द चौंकी उपरंत सोहदार रहिरास साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सरबत भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। भलके गुरद्वारा साहब विखे तीन श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग ऐतवार सवेरे 9:30 बजे पैणगे, उपरंत हफ्तावारी दीवान सजणगे। परिवारां ते नगर निवासियों वल्लों बेनती, आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। सरवण करदे हाँ गुरबाणी शब्द कीर्तन। सत्कारयोग भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाणे वालियां दे कीर्तनी जिथे पासों भुल्लां चुक्कां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

नेमती दात बख्शिश करनी, मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दियां दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। ऐस वक्त आप जी दे हजूर दीवाना दी समाप्ति दी अरदास है, कृपा करो पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने, सरबादे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तबै चलाए, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान, गुरु ग्रंथ जी माने ओ प्रगट गुरां, जो प्रभ को मिल बोच है।

नानक बिन सतगुर सेवे जम पुर बधे मारियन मुँह काल उठ जाहे महला पहला। जालों ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है जिन सेविया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है नानक तिन विटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम ते आई जिन सेवया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई नानक तिन विटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम ते आई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जिन्हों वडभागे जिथे आप जी ने सत्कार योग ढाडी जिथे पासों वारां ते इतिहास सरवण किया है सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। हुण सतगुरां जी के पावन सरूपां की सेवा संभाल ते सोहला साहिब पावन बाणी के पाठ होणगे। समाप्ति उपरंत आप संगत ने कड़ा प्रसाद की देख लैके गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का होय बिचारो तित कर गावो सोहिला सवेरे सृजन हारो तुम गावो मेरे निरभव का सोहिला हूँ वार जित सोहिले सदा सुख होय रहाओ नित नित जिड़े संभालियन देखेगा देवन हार त्रिदाने कीमत ना पवे दिसदा ते कौन शुमार सम्मत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल देह सजणिया सीसड़िया जो होवे साहब स्यों मेल कर हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गोरे कोवे सनेक बाबा जय कर ते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ विसोए चसिया कड़िया पैरा थिती वारी माँ होवा सूरज कोरो तेनेक नानक करते के वे सराग तना श्री माला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तू माल्याण लो पवन चवरो करे सकल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत पेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तुहे कहो सहस मूर्त ननायक तुहि सहस पद विमाल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंधिम चलत मोहि सम में ज्योत ज्योत है सोए तिसद चानण सब में चानण होए गुरसाखी ज्योत प्रकट होए ज्योत तिस भावे सो आरती होए
ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਵੰਦਨੋ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰੇ ਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਓ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੇ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੱਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਵਰਣ ਪਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸ਼ੁਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਾਧਾ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸਨ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇੜਾ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹਿਲਾ ਔਧ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਿਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਰਸ ਅਗਤ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੁਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ।

साच सबसे लागी प्रीत हर प्रभ आपना आया चीत नाम जब तो आप प्रगास गुर शब्द है कि नारद निवास गौर समराथ सदा दयाल हर जाप जाप नानक पय निहाल प्रभाती मल्ला पन्यवा गुर गुर करत सदा सुख पाया दीन दयाल पय कृपाला प्रणाम जपाप जपाया रहाओ संत संगत मिल प्या प्रगास हर जपूर्ण प्रयास सब लियासु मन उठाए हर गुण गाए गुर नानक तू ठाए प्रभाती मल्ला पंजवा गुर दु कर दूजा बेबास एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवन दूजा ठाओ नाही बिन हर नाओ सर्व से कल्याण पूर्ण हो सगल काम हर को नाम जपिए नीत काम क्रोध अहंकार बिन से लगे एक प्रिय रहाओ नाम लागे दुख पागे शरण पारण जोग सतगुर पेटे जमना तेट जे तो रोवे संजो रैन दिन त्याए हर तजो मन के परम साध संगत हर मिले जिसे पूर्ण कर्म जन्म जन बिखाद बिन सह राख लीने आप मात पिता मीत पाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती मल्ला पंजवा विभास पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम राम राम राम जाप कल ले लो मोह मिस जाए अंताप रहाओ आप त्याग संत चरण लाग मन पित पाप नानक बारक कछु न जाने राखन को ब्रह्माई बाप प्रभाती मल्ला पंजवा चरण कमल सरण टेक ऊच मूच बेअंत ठाकर सर्व पर तू ही एक रहाओ प्राण आधार दुख बदार देन हार बुद्ध विवेक नमस्कार रखन हार मन अराध प्रभु में संत रहन करो मजन नानक पावे सोखा नेक प्रभाती पर अष्टपदिया महला पहला बेबास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा बहुरी मन बहुराया झूठे लारे जन्म गवाया लवट रही फोन बंद ना पाया सतगुरु के नाम दड़ाया ना मन मरे ना माया मरे जिनकी गया सोए जाने शब्द विचार पो सागर तरे रहाओ माया संजरा जे हंकारी माया सा न चाले प्यारी माया ममता है बहुरंगी बैनामे को साध संगी जो मन देख पर मन तैसा जैसी मनसा तैसी ही दशा जैसा कर्म तैसी लिव लाभ सतगुर पूछ सहज कर पावे राग नाद मन दूजे पाए अंतरगढ़ महा दो पाए सतगुर पेड़े सोची पाए सचे नाम रहे लिव लाए सचे सब सच कमावे सची बाणी हर गुण गावे निज कर वास अमर पद पावे तांदर साचे सोभा पावे गुर सेवा बिन भगत न होई अनेक जतन करे जे कोई हो मैं मेरा शब्द कोई निर्मल ना वसे मन सोई ए जग मैं शब्द करनी है सार गिन बिन शब्द होर मोह गबार शब्द नाम रखे और तार शब्द गद मित मोख द्वार अवर नाही कर देखन हारो साचा आप अनूप पारो राम न उत्तम गत होई नानक होई लहे जन कोई प्रभाती मल्ला पहला माया मोह जगल सग छाया माया मोह सगल जग छाया कामन दे काम लबाया सुत कंचन स्यों हेत वदाया सब किश अपना एक राम पराया ऐसा जाप जो जब बाली दो सौ पर निराली रहाओ गुण दान तरंतर

कै कीड़े बेचता रात मर जमे होए खुवार। जिनको सतगुर पेटिया तिना विटो बल जाऊं तिनके संग मेरा सचे सा समाऊ। पूरे पा गुर पाइय पाओ कि ना पाया जाए। सतगुर ते सहज उपजै होमे शब्द जलाए। हर सरनाई पज मन मेरे सब किस करने जोग। नानक नाम न विसरै जो किस करे सो होगा। हर सुनाई पज मन मेरे सब किस करने जोग। नानक नाम न विसरै जो किस करे सो होग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जी सतगुरु जी पार बख्श रहमत कृपा का सदका अमृत वेले सजे दवाना दिया हाजरियां भरिया ने नेतने मनसार बाणी के पाठ सावन कीते ने। गुरु कृपा करे सब न चढ़दियां कला बख्शन। सोहा उस समा है आसा की वार दे कीर्तन का। भाई साहब भाई अंग्रेज सिंह जी का जथा सरवण कराउण गए आसा की वार दे कीर्तन। अज तीन खंड पठ आरंभ होणगे। ऐतवार नूं भोग पैणगे। परिवार वालों बेनती है दर्शन देने। सरवण करिए आसा की वार दे कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जी सोहे महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर काम कराउण आया राम तरत सहावी ताल सुहावा बेच अमृत जल छाया राम संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम तरत सहावी ताल सहावा बेच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पिया जग अंतर लाथे सगल वसूरे पूर्ण पुरख चुत बनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेसर नानक नाम त्याया नावनिद सिद रिद दीन करते टोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुह पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नठ दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसे भूख सबाई नान गुण गावे स्वामी कै अचर जिस वड्याई राम जिसका कारज तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावै सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोबिंद अनद उपजै साध संगत संग बनी जदों उजन उदम किया ताल तेरा केरा तिसके उपमा क्या गणी अठ सत तीरथ पुन करिया महा निर्मल चारा पदत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण दान मेरा प्रभ करता उतद कौन करी जय राम संतां की बेनंती स्वामी नाम महारस दीजे राम नाम दीजे दान कीजे बिसरना ही एकखना बिसरना ही एकखनो गुण गोपाल उच रसना सदा गाइए आंदेनो जैस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजा बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जीजा जैस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजा बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जीजा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सकार जो सत्संग जी सतगुरु दी पार बख्श रहमत होई अमृत वेले सज दीवान दी हाजरियां भरियां ने नितनेम सार बाणी दे पाठ उपरंत आस की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने सरबत दे भले लई आप सरबत संगतां दी चढ़दी कला लई गुरु चरणां विच अरदास बेनती होई है। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸਮਾਸ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਤਨਾਮ।

पांचों इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूले फल होई, ता फल फंक लखे जो कोई। दून न परई फंक बिचारे, ता फल फंक सबै तन फारे। बब्बा बिंदे बिंद मिलावा, बिंदे बिंद न बिशरन पावा। बंदो होए बंदगी गह, बंदक होए बंद सोध लह। जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहित अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत। साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब जिंदगी दीआं इन्हां घड़ियां श्वासां नूं सफलियां करन दा उद्यम गुरदेव की पावन बाणी दे द्वारा कर रहे हो। मेरे तो पहलां गुरु करके रागी सिंह आप जी दे नाल तुरकी बाणी के कीर्तन की सांझ पा रहे सन, तो आओ साध संगत समा है। लड़ीवार चल रही गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी दी कथा विचार दा, तो जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राही सरवण कर रहे हो, फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार विचार गौड़ी बावन अखरी भगत कबीर साहब दी रसना तो उच्चारण कीती हुई तिस विचों चल रही है। गौड़ी बावन अखरी कल्ले कल्ले जिहड़े अखर ने

जन जपिया तिस को बलहार, तिस कै संग तरै संसार। कहु नानक प्रभ लोचा पूरा, संत जना के बाछो तूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम, वाहिगुरु साहब जी, सतनाम, वाहिगुरु साहब जी, वाहिगुरु साहब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। सोचै सोच न होवै जे सोची रखबार, चुपै चुप न होवै जे लाए रहा निवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह सियन पा लख होहे तैक न चले नार। किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जीया हुक्म ले वडियाई। हुक्मी उत्म नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझै ता हुमै कहे न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे

आदेश तस्य आदेशात् अनिर अनाद अनाहत जो जुगे को वेश है एका माई जुक्त वे आई तेन चेदे प्रबाण एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीबाण जिव तिस भावे तिव चलाफै जिव होवे फरमान ओहो वेखै उन्हां नदने आपे भुगताए बनान आदेश तस्य आदेश साध अनिर अनाद अनाहत

सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर एक महागुण पारा सब त्यावे तुरजी हर सच्चे सज्जन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा हरिया पे ठाकुर हरिया पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू काट कट अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को परसमाना एक दाते पिखारी जी सब तेरे चोज बनाना

होय। तुद्यापे श्रेष्ठ सभ्य पाई जी, तुद्यापे सरसा गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होय। असम हल्ला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थे, जो तू देहे सोई हो पाई रहा। सब तेरे तू सबनी त्या, जिसनों कृपा करहे तनावतन पा, गुण खलादा मन मुखवाया। तू दे आप विछुड़े आप मिला, तू दरिया सब तुझ ही माए, तरपन दूजा कोई नाए।

पूरे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग श्री राग मोहला पहला कार पहला मोती ता मंदर उसरा रतनीता होहे जड़ा कस्तूर कुंगु अग्न चंदन लीप आवे चा मत देख भूला विसरा चेतने आवे ना।

फिर न देखा सपने सौनता भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़े आखा ना साचा निरंकार निताए सुन सुन आखण आखना जे भावे करे तुम्हारे रहा गुस्सा कटिया बार बार पीसन पीसा पाए अगे सेती जालिया पासु सेती रल जाए पी तेरी कीमत ना पयो केवड़े आखा ना पंखी होके जे पवा सह

दुखत से पे आखिए सुख जसहि पास सो क्यों मनोबसारिय जाके जी प्राण तैसे बिन सब पितरह जिता पैण खान होर गल्ला कूड़िया होर गल्ला सब कूड़िया तुस पाए प्रपान सिराक मल्ला पहला जाल मोह कस मस कर मत कास कर सरपार जाल मोह कस मस कर मत काव सर सार पाओ कलम ए देखा जान कर्म चित लिखाए पुछ पुछ लिख विचार लिखना सलाह लिख लिख अंदर पार बापा इहो देखा लिख चार जिथे देखा मंगिए तिथे हुए सच्चा नसारा जिथे मरे वडियाईया सद खुशियां ते चा तैन मुख टिका निकले जन मन सच्चा नाम कर मिले ता पाइए ना ही कली पाव दुआव एक आप एक जाए उठ रखे नाम सलाह एक उपाय मंगते एक नाम वे दृपा अगे गया जानिए प्रणा विकार पै तेरे डर कला खफखा सिजा दे नाब जना खुर सुरतान खान होंदे डिठे के नान खुटी चलिया सब कूड़े टुटे ने श्री राख मला पहला सब रस मिठे मने सुने सालोने खट तरसी मुखबूरना मारण नाथ की छत ही अमृत पाव एक जाकु न करे बापा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़े मन विचरे विकार हाव दत्ता पहनण मरता सफेदी सता नीडी स्याही कदा करनी पहरण पैर त्यान कमर बंद संतोखा धन जू प्रत्यानाम बाबा होर पहनण खुशी खुआ जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार राह खोड़े पाख

का मुख टिका जे तेत घट मत विकास होत मती सरला सतनाम कृता बाबा होर मत होर जिसो बिरकमाए कूड़े कूड़ा जोर कूड़ा कूड़ा जोरा पूज लगे पे तीर आखे सब मेरे संसार ना सताए अपना हुए ससमार जा पत लिखे ना पवे सभा पुरखवा जिनको सदगुर थापिया तन मेट ना सका कोय उन्हां अंदर नाम तन नाम परटोए नाम पूजिया नाम मनिया खंड सदा ससोए खेव खेरड़ाइए ता ज्यो के आ जरिया सब सियाणपा उठी चढ़िया रोए नानक नाए विसारे दर गया क्या हुए सिरा।

सच तोलै। हर हाव प्रभ हर मंदिर सोहना, तस्मै माणक लाल मोती हीरा निर्मला। कंचन कोटसार बिन पौड़ी गाढ़ क्यों करो, बिन पौड़ी गाढ़ क्यों चढ़ो। गुर हर ध्यान निहाल गुर पेड़ी, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहार नाव। गुर सर सर बोतो गुर तिर त्रिया जय तिस भावे उजले। सतसर नाम चा पूर्व पूर्व आखे पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहापने पूरे आस नराज। नानक पूरा जे मिलै क्यों काटे गुणता, सिरा कमला पैदा आवो भैने गढ़ मिलै। मिलै अंक सिरड़ियां मिलके करे काणे समरंत, कंत किया साचे साहिब सब कुण औगुण सबस। औगुण सब साव करता सब को तेरे जोर, एक शब्द विचारे जा तू त्याख्या होर। रहा जय पुछ सुहाकनी तुसी रावै किन्नी गुणी, सहस दो सिंगार मिठा बुरणी। पैर रिसालू ता मिलै जां गुरका साहिब सुनी, केती आ तेरी के कुदरत।

आत्मन ला कहिंदा मरणे की चिंता नहीं जीवन की नियाज तू सर्ब जिया प्रतपाली नेखे साखरास गुर अंतर गुरमुख तू वसै जो भावे तू निर्जार जीर राम जगत मन मान अंतर ला के जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाव अंतर का जानिए गुर मिले संख उतार मोया जित कर जाए तित जीव दे अमर पार अनहद शब्द सा अपने पाइए गुर विचार अनहद बाणी पाए तो हमें हो पना सतगुर से वे अपना साधु कृपाने तास खाड़ दर के पहनाइए मुख हर नाम निपास जय देखा तै रप रहे सब शक्ति का मेल त्रो कौन बंदी द्योहरी जुआ जगसो खेल भेजो की दुख विछड़े मन मुख लहे न मेल मन पिरा की कर बसे सच पैराता हुए ज्ञान महारस भूख पै बौड़ भूख न होए नानक ए मन मार मैल पी फिर दुख न होए सराख मला पीला इहो मनो मूर्ख लोपिया लोपे लका लोपान शब्द न भीजे साखता दुर्म त्या प्रजान साधु सको जे मिलै ता पाए गुणी निदान मन रे होमे छुड़क मान हर गुर सर सेव तू पावे दरके मान रहा राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हरतन जान सब सुख हर भूखने संत सपा मिल ज्ञान नित एनस हर पासे पिया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई गुर नंदा पते पहचान परमे पूरा दुखनो जम मारे खुलहान मन मुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुपान ऐथे तन फटै सच रिस प्रपान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रदान नानक नान विसरै कर्म कर्म सच्चा निशान श्री राख महला पहला एक तिल प्यारा विसरै रूख वड्डा मनवाए क्यों दर के पर पाइए जा हर नाम से मनवाए गुर मिले सुख पाइए अगन मरे गुण माए मन दे एनस हर गुण सार जिन खिन पर नान विसरे ते जन विले संसार आव ज्योति ज्योत मिलाए सति ससंजोक हिंसा हमें गत के नाही ससा सोग गुरमुख जिस हर मन से तिस मिले गुर संजोक काया कमन जे करी भूखे फूकन हार तिसो निवन की चाई जे दिसे चरण हार गुरमुख रवे सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अकनवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कम प्रकाश अमृत भरिया अकाय नानक सतगुर मीत कार सर पावे दरके जाय सिराख महला पहला हर हर जप प्यारा गुरमुख ते हर फूल मन सच कसवटी डाइव तुलिया पूरे तोल कीमत के न पाए रद मानक मूल अमोल भाई रे हर हीरा मन हर हीरा गुरमाय सत्संगत सतगुर पाई एनस सबसलाय रहा सच बखर तन रासै लै पाई गुर प्रकाश जो अगन मरे चल पाई तो तृष्णा दसन दास जन जनदान रखी ओ भोज त्रे त्रास गुरमुख कुण भावी सच रते सर पाए साकत सतन पाए कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मिले सचे सास माए मन में मानक लाल नामतन पदार्थ हीर सच बखर तन रास है कड़कड़ गैर कंबीर नानक गुण पाई दया करे हर ही सिराख मल्ला पीला भरमे पाहे न विज वै जे पवित्र संत देस अंतर मैन उतरे त्रख जीवन त्रवेश हुरक ते भक्त न होपे बिन सतगुर के उपदेस मन रे गुरमुख निपार गुर का क्या मन सह होमे तृष्णा मारा मन मानक निर्भुल है राम नाम पात पाए मिल सत संगत हर पाए गुरमुख हर लवलाए आप गया सो पाए मिल सल सलसमाए जिन हर हर नाम चित सो औगुण आवे जाए जिस सतगुर पुरख न भेटो सो भव जल पते बचाए एहो मानक जीव निरपुल है इहो कौडी बदले चाए जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरस जान गुर मिल भव चल लंघिया दर कै पत प्रवान नानक ते मुख उजलै तुन उपजै शब्द निशान सिराख मला पहला वणज करहु वणजार बखर लो समा तसी वस्त विसाही जासी निपे नाल अगे साहु सजन है लसी वस मार भाई रे राम कहो चतुराए हर जस वखर लै चलो सो देखै पति आए
रहाउ जिन्ना रासन सच है, क्यों तिन्ना सुखोय खोट है, वणज वणंजे है, मंत्र खुटावे फाई फाते मिर्ख चो दुखा कणो नित्रोय खोटे खोटे ना पवे तिन हार गुरदर्शन होए, खोटे जात न पत है खोट नसीज कोई, खोटे खुरकमाप न आए गया पत खोए, नानक मन समझाइया गुर के सा सला, राम नाम रंग रतिया पा न परमतना, हर जप लहा कला निरपो हर मन माहे सिरा कमला पेला, कर दूजा तन चुप नर फुरला नाठी दिन चार, पबन केरे पत ज्यो ढाल टुर जुमन हार, रंग मान ले प्यारिया जा चुप न हुला, दिन थोड़े थके पिया प्राणा चूला राव, सज्जन मेरे रंगले जय सते जी राण, हंग पी बंजा डुमनी रूपा चीनी पान, की ना सुनी कोरी अपन कनी सोए, लखी आवे सोरे नित न पिया होए, नानक सती पई है जान बिरती सन, गणक पाई गंठड़ी आपकन चली पान, सिराख पान ला पेला कार दूजा, आपे रसिया आप रस आपे रावण हर, आपे होवे चूरड़ा आपे सेवता, रंगता मेरे साहिब रव रहा भरपूर, रहो आपे माछी मछली आपे पानी जाल, आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल, आपे बब रंगला सखी मेरा लाल, नित्र रवे सुहाकनी देख माला हाल, परमे नान बेनती तू सर्व तू हंस, कौर तू हूँ कौल तू है, कविया तू है, आपे वेख बस, सिराख मला पेला कार तीजा, एहो तन तरती बीज कर्मा करो सरल पाओ सार पाणी, मन किरसान हरद जमाए लै, यो पाप स पस पाणी काहे कर्म समूड़े माया, पैत सुतो सकल कलतर माता तेरे होहे नंसकारा, बिखे बिका दुट किरखा करे इन ता जात में होए त्याय, जाप तप संजम होए जब राखे कमल विकसै, मद सरमाय बीसप तारु बासरो संग्रह, तीन खोड़ा नित कार साज दास अठार, मैं प्रभुति ने कह नानक एव एक तार, सिराख माला पहला कार तीजा, अमल कर धरती बीज शब्दो कार, सच की आप नित्य प्राणी होए किसान, इमाय जमाए लाए पैत दूजे दूजक पै दूजक मुड़े इव जानी, मत जान सह कली पाया, माल के माने रूप की सुभात बिधि जन पा रहा, ऐब तन चिकड़ इहो मन मीड को, कमल की सार नहीं मूल पाए, पौ पौ उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों बुझे जा न बुझाई आखर सुना पुण की बाणी, ए मनता माया खासम की नदर दिल पसंदे जन कर एक त्या, ती का रखे पन कर साथी नाम सतान, मत कट जाए नानक आखे राह पैचलना, मार धन कैत कू संजाय सिरिया पना पेरा कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया हर किया संसारू, आप खाक जिन बंद रहाई तन सृजनहार, मरना मुला मरना फिकर तारो डन रहा, तातु मुला तातु काजी जाने नाम खदाए, जे बो तेरा पढ़िया होपे को रहन प्रिय पाए, सोई काजी जिन आप तिया एक नाम किया आधारू, हैपी उसी जान जासी सचदा, सच्चा सजन हर पांच बात वाक चारे पढ़े कतेव पुराणा, नानक आखे गोर सदे हरे पीना खना, सिराक मला पैदा कर चौथा, एक सवान दो सवानी नाल पल के पौके सदा प्यार, कूड़ छुड़ा मुठा करता टणक रूप राकरता, मैं पत की पंद न करनी की कार, हो पिकड़ा रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तरे संसार, मैं इह आस इहो दाराव, मुख निंदा खद निंदा पर का जोई नीचना, काम क्रोतन वसे चंडा तन रूप राकरता, फाही सुरत मरुकी बेसो ठकपा ठगी देस, खरा सियाणा बहुता पार तनक रूप राकरतार, मैं कीता ना जाता हराम खोर, हो क्या मोह देसा दुष्ट चोर, नाक नी कह विचार तनक रूप राकरतार, सिराख मना पेला कर चौथा, एका सुरत जिते जीत सुरत बिना कोई न की, जेहे सुरत त्यातन रा देखा, इको आव जा काहे जी करिष्ट राय, देफे देव ढिल न पाए रहा, तेरे जी जिया का तोय कृतक हो, सा प्या फिरोए जे तू सा प्या फिरोए,
तू ना का तेरे ओहे असी बोल पकाड़े पुगाड़े बोला तू न धरी अंदर तोले तोला जय करणी तय पूरी मात करणी पाजो खट्टे घट प्रणत नानकानी कैसा हुए आप पछाने बूझे सोए गुर प्रसाद करे विचार सो क्या नि दखे प्रवान श्री राग महला पहला कर चौथा तू दरिया दाना पीना मैं मछली कसे अंतर लाह जय जय देखा तै तै तू है तुझते नेगटिव फूड मिला ना जाना मिहो न जाना चारी जा दुख लागे तां तुझे संभाली रा तू भरपुर जाने मैं तूर जो किश करी सो तेरे चूर तू देख हो मुखरपा तेरे काम ना तेरे नाए जिता दे तेता हो जा बिया दर नाही कै दर चाव नानके कैरता जीवपन सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मन प्यानु आपे विखे आपे सुने आपे कुदरत जहान आपे कुदरत करे जहान जुत पाए नानका हुक्म सही प्रवान सिरा कमला पेला कर चौथा कीता कहा करे मरपान देवन हरि कर दान भावे देन दे सोए किते कै कहे क्या होए आपे सच पावित सच अंधा कच्चा काचन काचरा जाके रुख बिरखरा जेही तात त्या तिन ना फुल भाव फल लिखा पाया पे बीजा पे खाए कच्ची कंध खता विचरात मत रोनी फिका सार नानक आणिया फिर रास बिन नाही नाही सभा श्री राख मला पेला कार पनमा अशल शलाई नै शलै नै काव कटारा कर सकै जो साहिब राखे तो रहे इस लोभी का जीव डल फले बिन तेर दीपाए जलै रहा पोथी प्राण कमाई पवटी एतन पाई सच बुझन आंजराय ए तेर दीपा यूं जड़े खरचान साहब तो मिल राव एत तन राखे पाणिया सुख वे से कमाणिया सब दुनिया अपन जानिया विच दुनिया से कमा तां दरख बैसन पाए को नानक बाहन लड़ाए सिरा कमला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हो सब सेवी अपनाए एक मन एक तिल पाए सतगुर मन कामना तीर्थ ने बजाय मन चिंदिया वार पावना जो से सो प्रपा नाम त्याहिए नाम मंगी है नामे सह समाय मन मेरे हरस चाख दे चाहे जिनी कर्म कर चाख्या स जेरे समाय राव जिनी सतगुर से पिया तिनी पाया नाम तन अंतर हरस रव रहा चुका मन पवान हृदय कमल प्रगास लागस है ध्यान मन मन हर रप रहे अपाया दर के मान सतगुर शिव ने अपना से बिले संसार हमें मता मार क्या राख्या अवतार हो तिन के बुरान जिन्ना नामे लखा प्यार से सुखी है चौ जुकी जिन्ना खुटपार गुर मिल है ना पाए चुके मोह प्यास हर छेती मन रापया करी माए उदास जिन्ना हर जिन्ना हर का साध्या हो तिन पर हरे जास नाग तरी पै सत नाम गुणताज श्री राख महला तीजा बपेख कर परमाय मन हृदय काट कमाए हर का मैन पावी मन विष्टा माय पसमाए मन रे गिर ही माह उतास सच संजम करणी जे करै सच संजम करणी सो करे गुरु खोए प्रगास राख गुर के शब्द मन जीत्या गत मुक्त करे मैं कर मह पाए हर का नाम त्याय सत्संगत में मिलाए जे लाख स्त्रिया भोगा करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावी फिर फिर जूनी पाए हर हार कंठ जिनी पैरा गुरचाणी चितराए तिना पिछे रिद सिद फिरै उन्ना तिना तमाय जो प्रभ भावे सोती है वन करना जाए जे नानक जी पे नाम लै हर देवो सह सपाए श्री राख मला तीजा कार पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोई गुरमुख कारक पावनी सच कर प्रगट होए अंतर जिसते सच वसे सचे सची सोए सच मिले से न विछड़े तैन निज कार वासा होए मेरे राम मैं हरकन अवर न कोए सतगुर सच प्रण फला शब्द मिलावा होए राम शब्द मिले सो मिल रहे जिसनु आपे मिले जिसनु आपे ले मिलाए दूजे पाए को न मिलाए फिर आवे जाए समय एक वरदा एक कुरिया समाए जिसनु आप तैयार हुए सो गुरमुख नाम समाए पाठ पाठ पंडित जोत के बात करे विचार मत बुद्ध भवि न बुझे अंतर लोभिकार लख चौरासी ही परम दे परम्परा हुए कुवार पूर्व लिखिया कुमाणा कोई न मिटन हार
सतगुरु की सेवा गाखड़ी सदीजे गाप गवाए सद मिले ता हार मिलाए सेवा पय सबताए पारस परस पारस होए ज्योति ज्योतम समाए जिन को फूल लिखिया तिन सक मिलया आए मन भुखा भुखा मत करे मत तू करे पुकार लाख चौरासी ही जिन श्री सबसे देवता ने पुस्ता ने पुस दयाल हुए सबना करता सार नानक गुरमुख बुझी है पाइये मुक्त पा सिराक पंडा तीजा जिनी सतगुर जिनी सुन के मनिया तिना निज घर वास गुरमति सराय सच हार पै गुणता शब्द ते सिन मले हुन सत बलहार जास हिरदे जिन के हर वसै तित घट है प्रकास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखिया से गुरमुख रेलु लाए राव हर संतु देखो नजकार निकट वसै भरपूर गुरमत जिनी पछाणा से देखे स्थान जूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगुणत्या दूर मनमुख गुण ते बाहरे पिना मरद चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन तैयार सोए अनदन भक्ति रतिया मंत निर्मल होए कूड़ा रंग कुसुम का बिन चाहे दुख रोए जिस अंदर साच जिस अंदर नाम प्रकाश है होए सदा सदा होए एहो जन पदार पाए के हर नाम नचेते रुलाए पग खिसे ऐम रण नहीं आगे ठोन टाए वो बेला हथ ने आपी अंत क्या पेता जिस न करे सो प्रया से तिर बुलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है से पई तन थाए हर गुण कापे हर नित पढ़े हर गुण गाय समाए नानक तनखी बाणी सदा सच है जे नाम रह लाए सिराक मला तीजा जिनी एक मन नाम त्याग गुरमति विचार तिनके मुख सतगुरु सच्चे पाए उह अमृत पीवे।

त्याग संतान संगत मिल रहे। जप राम नाम सुख पाए राव, गुरमुख सता साकनी पिर पिर राख्या उरतार मिठा बूले निव चले सिजरे पता। सुबह बंती सुहाकनी जिन गुर के हेत प्यार, जिन गुर के हेत पार पूरे पास सक मिले। जा भागवत उदो होए अंतरो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए। गुर के पाणी जो चले दुख न पावे कोई, गुर के पाणी बिच अमृत है सहजे पावे कोई।

ने अपना तन मना के तरे सुहागनी कर्म कमाव दिया सही कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा साहब पढ़ाई दे भाई दे गौर पिन भगत न हो बिन कोर शब्द बिन गुर भात न पाइए जे लुचे सब कोयरा लाख चौरासी फिर पिया काम दूजे पाए बिन कोर नीत न आपे दुखी रहन पाए बिन शब्द फिर न पाइए बिरथा जन गवाए हो करती जग फेरी न तन संपे नाल अधि अंधी चे अंधी नाम चेती सब आदि जमकार सतक में तन पाया हर नाम अर्द संभाल नाम ते से बले गुर के शब सपाए मन तन तारंग सोन रसना रसन रसाए नानक रंग न उतरे जो हर तुर छोड़ी आलाए सिराग मला तीजा गुरमुख कृपा करे पात की जय बिन गुर भक्त न होई आपे आप नाए बूझे तन मन होवे सोए।

0: नमस्कार जो सत्संग जी सब जी हैं अज गुरु महाराज की पार बख्श रहमत कृपा का सदका दो परिवार तो उन्होंने बच्चे कंग परिवार वालों काका जैसन गिल परिवार वालों बच्चे अवनीत कौर गुरु महाराज की पावन पवित्र हजूरी में गृहस्थी जीवन में प्रवेश होने वास्ते हाजिर हो आप संगतों के रूप के सो गुरु महाराज कृपा करे इन्हों बच्चों सतगुरु चढ़ दी कला बख्शिश कर सो आप जी ने भाई साहब वासों जो आनंद कार्य का जो संपूर्ण साडा संकल्प है इस बारे आप जी ने पूरी जानकारी दी है कि आनंद कार्य गुरु महाराज की पावन पवित्र हजूरी में चार लावां दे नाल परिक्रमा करके गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार करके असी इस गल नूं गुरु महाराज के जीवन में गुरु महाराज के चरण प्रण करना कि जो सतगुरु सानू उपदेश बख्शिश कर रहे ताज जिंदगी आप उन्होंने अपने जीवन में इस आधार बना के अपने जीवन में सफल करदा सी यतन करांगे सो गुरु कृपा करे रहमत करे बच्चे पढ़े लिखे ने और ये सब कुछ जानते ने ना सुने सब कुछ जानते कोशिश करो कि आप जो तुम आनंद कार्य तो पहला प्रवान सिख रहत मर्यादा आनंद कार्य का कॉलम पढ़िया कि आनंद कार्य की है वैल एंड गुड जो नहीं तो कोशिश करो जिन्हें बच्चे बैठे भी ने उन्होंने भी मेरी बेनती है जिन्होंने आने वाले समय गृहस्थी जीवन में प्रवेश हो यू मस्ट बी नोस तुम्हें पहलों पता होना चाहिए कि आनंद कार्य की है वो जानकारी लैन वास्ते तो मैं बेनती करा कि तुम कोड ऑफ कंडक्ट प्रवान सिख रहत मर्यादा जरूर पढ़ो वो जो सू हदायत दी गई ने कि आनंद कार्य आया पा तो वो मुताबक असं आनंद कार्य करने का यतन करिए सो बारे भी भाई साहब ने थोड़े ना सांझ कर दी है और उस तो बाद कोशिश ये करनी है कि ज्यादा लावां का पाठ आनंद कार्य तो पहला हर एक बच्चे तो बच्ची उन्होंने पढ़ के तो वो अर्थ वेखने चाहिए कि सतगुरु ने सानू की पहली लाँच की बख्श किया दूसरी च की बख्श किया तीसरी और चौथी दे सानू की बख्श किया ये साढ़े जेहन में होना चाहिए क्योंकि एक यदिया प्याज नहीं कुछ सिद्धांत है जो सिद्धांत असं अपने जीवन अपनाने वो वास्ते मैं तुम्हें दोनों बेनती करते बच्चों भी बेनती करा कि आनंद कार्य तो पहला अगर कोशिश करो तो आनंद कार्य तो जो पहले आनंद कार्य जिन्हों के होने वो तो आनंद कार्य तो पहला पढ़ने का यतन करते जिन्हों का हो गया तो जो हो रहा उन्होंने बेनती है कि समा ब लगे तो ये जरूर पढ़ना दूसरी बेनती है सब तो वड्डी कि आप गुरु ग्रंथ गुरु पंथ के सिख हाँ गुरु ग्रंथ गुरु पंथ आश अनुसार जो जीवन सतगुरु ने बख्शिश किया गुरसिख मी चलो गुरु चाली जो गुरु कहे सोई भल मानो जो गुरु कहता वो की कहें सतगुरु कहते जीवन में सत संतोख दया धर्म की कमाई कर नाम सिर्फ बंदगी भगती माता पिता के मान से सत्कार सेवा करके उन्होंने जीवन में खुशियां अपने जीवन में खुशियां लिया का यतन करना एक दूजे को समझना और समझ के अपने जीवन के आप गुरु ग्रंथ साहब के हमेशा हर समय से अरदास करनी है क्योंकि बिरथी कदे ना हो भी जन की अरदास वैसे मालिक ने बहुत कृपा करके तुहानूं आनंद कार्य तो पहला जिहड़ा हुक्मनामा बख्श किया है वह यही बख्श गया तुर में दूजा ना ही कोई तू करतार करे सो तेरे तो बगैर होर कोई नहीं जो तू कर रहा तेरे हुक्म चोर तेरा जोर तेरी मन टेक सारे तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा तो पातशाह कहिंदे फिर सदा सदा जप ना फिर सदा उन्हूं चेते रखे कोशिश करो खड्डे बाटे की पौल प्राप्त होवे समा बने तो गुरु चरणा ने जुड़ के आप इस जीवन में सफल करने का यत्न करना सतगुरु तुहानू चढ़दियां कला बने सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन आने वाला जीवन तुहाडा खुशियां भरिया प्रेम प्यार इतफाक दा होवे जिन्ना तुहाडा जीवन उच्चा उन्ना तुहाडे पेरेंट्स का जीवन जिहड़ा उच्चा तुहाडे उच्चे जीवन नाल ही उन्हां दा जीवन उच्चा कोशिश करनी कि रोल मॉडल बनीए तो अपने जीवन में इहो जिहा बणाईए कि आने वाले बच्चे साडे जीवन विचों कुछ सीखे अपने जीवन में गुरु चरणा जुड़ के सफल कर सकन गुरु कृपा करे चढ़दी कला बख्शे बहुत बहुत धन्यवाद सो हुण आपां आनंद कार्य आरंभ करना सो मैं बेनती करांगा दोनों बच्चों मत्था टेक के तुसी दोनों बच्चे खड़े हो जाओ तो आप पल्ले की रस्म अदा की है भाई साहब ने भी बेनिफिट किया पर मैं आप जी ने बेनती करा जिथे बच्ची का पला बच्चे परिवार वालों पकड़ाया गया उथे लड़के ने भी लड़की का पला फड़िया तो हूँ दोवान की इको जी बराबरी है तो दोनों ने हूँ गुरु महाराज के चरणों में परिक्रमा कर दो बरल करके ये दोनों ने गुरु का पला पढ़ना तो जो गुरु गुरु के लड़ लग गए तो फिर गुरु दिया बख्शिशा के असी पात्र बनते हैं गुरु कृपा करे ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਉਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਜੇ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
1: ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੰਭਾਏ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਸੇਵਕ ਕੈਸਤ ਭਾਏ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ

पूरा रख लिहो प्रभ करण हारो जी जंत कर दे आओ बिन प्रभ कोई न रखण हारो महाबिकट जन भय आ नानक नाम न विसरो करे अपनी हर में आओ।

कर संगत नित साध की, गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान ते आइए मस्तक हो बे पागो, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लागो। होमे रोग परम कटी है ना आवे ना जागो, कर संगत तू साधकी अड़सठ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा है सो आओ, इत्थे मिले बड़े आई।

ज्यों कुकर हरि का आओ तवै दे दह जाई, लोभी जंत न जानी भख आ पख सब खाई, काम क्रोध मद व्य प्याओ फिर जूनी पाई, माया जाल पसारिया भीतर जोग बनाई, तिसना फंखी फंथिया निकस न पाई माई, ए जन कीता तिसे न जानई फिर आ पै जाई, अनक प्रकारी मोहे आओ बोबद ही संसार, जिसनू रखी सूर है समर्थ पुरख अपार, हर जन हर लवे उदरी नानक सद बलहार, श्री राग महला पंजवा कर दूजा, गोई ले आया गोई ले कात डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल करवार।

समगरी तुम रे तुम ते हो ऐसो तुमरी गात मित नानक दास तुमरी गात मित तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी क्यों ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबैनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिठ सबद हो जाए तेग बहादुर सिमरै का नौ दयावे ताए सब थाई होई सहाय दसवीं पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब ताई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तरखाल सिख सब बोलो जी वाह पंजा प्यारिया चौ सब जाते हैं चालिया मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शाही सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख के डट कीता तिना गुरमो प्यारे चारे की कमाई का ध्यान तरखाल सिख सब बोलो जी वाह जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते बांध बांध कटाए चरखड़ियां ते चढ़े आ रहा नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लुहाईयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ले कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असह ते कह असहार दे शीदो सिकिद के सासवासा संग नभाई धर्म नहीं हारिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तरखाल सिख सब बोलो जी वाह पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरखाल सिख सब बोलो जी वाह प्रथम खालस जी की अरदास है जी सरबत खालस जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचरिया देह ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकर खालस जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखा न मन नीवा मात उचे माते राखे आप काल पुरखंतर जामी गुरु गरीब नवास जी पातशाह श्री ननकाणा साहब गुरुद्वारे जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी नमाण्या दे माण ने टाण्या दे ताण ने उल्टियां दी औण ने आसरे दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दा कुटान गुर शुकर आप दे पार बख्शे रहमत कृपा दा सदका आप दी पावन पवित्र हजूरी विच धुरदे बने संजोगां दा सदका तरों करोड़ साहब भाई इंद्रजीत सिंह बीबी जसबीर को कंग दे सपुत्र काका बरखर दा काका जैसन कंग दे शुभ आनंद कारज बच्चे अवनीत कौर गिल सुपुत्री बीबी रविंदर कौर गिल ते दोती

0: दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दो जाए। वाहिगुरु साहब जी सूठ महला पंजवा परमेसर दिता बना दुखरो का डेरा पन्ना आनंद कर नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी परमेसर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद कर नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेसर रावरिया सब नहीं जाई रहाओ तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु सवारी सतसंग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटां कोटां धन्नवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिन्हों का ओट आसरा लैके नंज कारज का जो कारज से शुरू किया गया गुरु कृपा होए निर्विघ्नता साहब संपूर्ण होए हैं तथा बच्चे बच्चा जो दोनों बच्चा जेसन सिंह कंग सपुत्र भाई इंद्रजीत सिंह बीबी जसवीर कौर जी कंग का आनंद कारज जो है वह बच्ची अवनीत कौर सपुत्री बीबी रविंदर कौर ते दोती बीबी गुरबख्श कौर जी दे नाल पूर्ण मर्यादा दे अनुसार जो संपूर्ण होए हैं दोहां ही परिवारों वालों गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वालों बहुत बहुत मुबारक बधाइया ते आस करते हाँ गुरु अगे बेनती करते हाँ कि इन्हां बच्चों का दोवां का जीवन जो है गुरमत दे अनुसार बहुत वधिया सोहना ते खुशियां भरिया होवे ते बच्चे अपनी जिंदगी दे विच गुरसिखी नूं नाल लै के अपने जीवन दे विच दिन दुगनी जो है अपनी तरक्कियां महाराज इन्हां नूं बख्शिश करन। ते जो जिस तरह ज्ञानी जी ने दस्या कि अज तो हुण तो कोई 20 मिनट पहलां इह बच्चा बच्ची जो सन दोवें कल्ले कल्ले आए सन गुरु कृपा होई आप जी ने नोटिस किया होना जदों छोटी अरदास हुंदी है ते उदों सिर्फ बच्चा बच्ची तो इन्हां दे गार्डियन ज माता पिता ही खड़ते हैं बाकी संगत क्यों बैठी रहिंदी है। बहुत वारी ख्याल आता है मन दे विच है कि ये बच्चे का जो आनंद कारज हो रहा सी उस दे उत्ते जदों ये आनंद कारज चार लावां इन्हें लईयां गुरु महाराज की बख्शिश होई गुरु महाराज ने इन्हां दे आनंद कारज दे उत्ते मोहर ला दित्ती कि तुसीं गृहस्थ जीवन में प्रवेश होण जा रहे हो गुरु ग्रंथ ते पंथ दो इक्को ही हन एक चीज़ है गुरु ते पंथ नूं भी उन्ना ही दर्जा दिता गया है ते ये सारा पंथ जो पंचायत बैठी रहिंदी है इस पंचायत ने इस पंथ ने भी तुहाडे गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने की जो मोहर लाई है इस करके वह बैठे रहिंदे हन। आपां सब जो हम परिवार वाले बच्चा बच्ची ते उन्हां दे जो पेरेंट्स हन वह जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी अगे अरदास बेनती कर रहे हैं नाल दी नाल पंथ पास भी बेनती कर रहे हैं कि साडे बच्चा बच्ची जो हैं अगों जो अपने गृहस्थ जीवन में अपनी लाइफ शुरू कर जा रहे हैं। सो एक बार फिर दोहां ही परिवारों नूं बहुत बहुत मुबारक ते जो ये खुशी के मौके होंगे इन्होंने मौके पर साढ़े गुरद्वारा साहब के जो ढाडी जथा है आप जी के नाल पाँच सत्त मिनट वास्ते एक वधाई के रूप में एक कविता रही सांझ पाउणगे ते उस तो बाद आप अगला प्रोग्राम जो है इस तरह कंटिन्यू रखांगे। आओ भाई गुरप्रीत सिंह जी पासों जो है एक वधाई के रूप में आप कविता सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु सतनाम पावन सतगुरां दी हजूरी अंदर बैठे परम प्यारे खालसा जी सारियां सिख संगतां मख नूं पवित्र करदे हुए ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਜੈਸਨ ਕੰਗ ਔਰ ਬੇਟੀ ਐਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਦੋਹਤੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ। ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਜੈਸਨ ਕੰਗ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਐਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਯੋਗ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਵਾਨਾ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਈ ਜੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ।

चत चले वत जामणो साकत डोल डलाए, बाहर ढूंढ बगुचिया घर में बस्त ससाए, मन मुख होमे कर्म से गुरमुख पल्लै पाए।

सुख जीवन तस आखी है जिस गुरमुख बसिया सोए नाम बहुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यों सुपने न सुपुली है जब लगन इंद्रा होए ओं सरपन कै बस जीअड़ा अंतर हो मैं दोए गुरमत होए बिचारी।

मन मुखपत गवाई मन सतगुरु को मग्न जाने अंधे ठौर न काई हर सुख दाता मन नहीं बसे अंत गया पछताई पई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन बसाया अंधन भगत करे दिन राती होमे मोह चुकाया जिस सौ राता तै सो होवै होमे होवै सचे सच समाया आपे नदर करे बोलाए गुरु शब्दी विचार सतगुर सेवे सहज उपजे होमे तृष्णा मार हर गुण दाता सतगुण वासे सच रखिया उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम धन हर मन बसाए होमे दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हो सदबल हार जाओ अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आपन जाए हर जियो भक्त बचल सुखदाता कर कृपा मन बसाई नानक सोभा सुरत दे प्रवे आपे गुरमुख दे बड़ियाई श्री राग महला तीजा होमे कर्म कमावदे जम डंड लगे तसे अतने आए जे सत

नाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुए जन्म नहारिय नानक बेनंती प्रपह कृपा कर भव जल तारिय दक्षिणा तूड़ी।

सुंदर स्वामी तहां भगत तहां विश्राम आसा लगते जीवित जियो मन तने गुलतान सिमरत प्रभ नाम हार अमृत पीवित जियो अमृत हर पीवते सदा थर थीवते बिखे बन फीका जानेया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निदमनया।

कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुलतारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म बिचारिया जियो ब्रह्म बिचारिया जन्म सुभरिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गहलीने हर जसो दीने जोनन तावे नह मरी।

गुरुप्रसाद दी सच चित लाए, सचो सच वरते सभनी थाई, सचे सच समा मणिया बेपरवाह हो सच मेरा प्यारा, किल विखब गुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई पै भगत भगत रड़ावणया, तेरी भगत सच्ची जय सच्चे भावे, आपे दे ना पछतावे, सबना जिया का एको दाता, सब दे मारे जीवा बनया, हर तुद बाजो मैं कोई नाही, हर तुदे सेवी ते तुद सलाही, आपे मेल लहो प्रभ साचे, पूरे कर्म तू पावणया, मैं होर ना को थो तुद जहा, मैं होर ना कोई तुद जहा, तेरी नदरी सिंस देहा, अन दिन सार संभाल हर राखो, गुरमुख सहज समा बनया, तुद जेवड़ मैं होर ना कोई, तुदे आपे सिर जी आपे गोई, तू आपे ही घड़ भन सवार है, नानक नाम सुहा बनया, माज महला तीजा, सब कटे आपे भोगण हारा, अलख वरते अगम अपारा, गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याई है, सहज सच समा बनया, हों वारी ज्यों वारी, गुर शब्द मन विसा बनया, शब्द सूजे ताम मन स्यों लूजे, मनसा मार समा बनया, रहाओ पंच दूत मोह संसारा, मनमुख अंधे सुध न सारा, गुरमुख होवे सो आपना घर राखे, पंच दूत शब्द बचा बनया, एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते, सहज प्रभ सेव है अन दिन माते, मिल प्रीत में सच्चे गुण गावे है, हर दर शोभा पावणया, एकम एके आप उपाया, दुबदा दूजा त्रैविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊची, सचो सच कमावणया, सब ते सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरमुख करनी सच्चे सहब है, सच्चे जाए समा बनया, सच्चे बाज हो को अवर न दूजा दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख होवे सो एको जाने, एको सेव सुख पावणया, जी जंत सब सरन तुम्हारी, आपे आप देह कच्ची पक्की सारी, अनदिन आपे कार कराए, आपे मेल मिला बनया, तू आपे मेले वेखे हदूर, सब मह आप रहा भरपूर, नानक आपे आप वरते, गुरमुख सोजी पावणया, मांझ महला तीजा।

माया मोह सब शुद्ध गवाई कर अवगुण पछतावणिया सतगुर मिले तां तत पाए हर का नाम मन बसाए शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया किलविख काटे क्रोध निवारे गुर का शब्द रखे और धारे सच रते सदा बैरागी होमे मार मिलावणिया अंतर रतन मिले मिलाया त्रै विद मनसा त्रै

मुख रोगी है संसारा, दुख दाता विसरया अगम अपारा। दुखी नित फिरे विलला दे, बिन गुर शांत न पावण आ। जिन कीते सोई विद जाने, आप करे ता हुक्म पछाणे। जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावण आ। तिस बाज सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लए सो निर्मल होई। नानक नाम बसे घट अंतर।

हर नाम समल हे सेवट भागी सच्चे शब्द आप मिलाए सतसंगत सचगुण गावणिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम अगोचर शब्द सुध होवे अनदिन शब्द जो अनदिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावण आ पढ़ पढ़ थाके शांत न आई तृष्णा जाले शुद्ध नकाई बिख बुझाहे बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावण आ गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरते मन अंतर गुर प्रसादी पावण माज महला तीजा बरन रूप वरत है सब तेरे मर मर जम है फिर पवे है कनेरे तू एको नहचर अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावण हो वारी ज्यो वारी राम नाम मन बसावण तिस रूप न रेख वरन न कोई गुरमती आप बुझावण रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवी है प्रगट होई गुप्त प्रगट वरते सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया तिसना अगन जले संसारा लोभ मान बहुत अहंकारा मर मर जन्म में पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया गुरु का शब्द को बिरला बूझे आप मारे ता त्रै पवन सूझे फिर

सच सलाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के शब्द रहा भरपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच नह चले आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेविये सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब मह समानी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी ज्यों वारी सुखदाता मन बसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्द सुन तिष्टा महटावणिया रहाओ निर्मल नाम बसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बिजावणिया निर्मल अमृत गुरते पाया विचों आप मुआ तिथे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन बसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर शब्द धोवे निर्मल वाजे आनंद धुन बाणी दर सच्चे सोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द प्रोवे निर्मल नाम लगे बडभागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्द सोहे निर्मल नाम मन तन मोहे सच नाम।

सदा आनंद रहे दिन राती। गुण कहे गुणी समावणिया, हो वारी जो वारी नाम सुन मन बसावणिया। हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा, हो में मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा सच्ची नाई, गुर प्रसादी किसे मिलाई। गुर शब्द मिले से विछड़े नाही, सहजे सच समावणिया। तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाई सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठोर न ठाओ, भ्रम पूले ज्यों सुंजे कर काओ।

था जन मंगवाए। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल विख खावणिया, इस तन मह मन को गुरमुख देखे, पाए भगत जा होमे सोखे, सिद्ध साधिक मन धारी, सिद्ध साधिक मोन धारी, रहे लिव।

तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल ना जोहे दुख ना संतापे, होमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया, हों वारी ज्यों वारी हर हर नाम सुहावणिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर सेती चित लावणिया, रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवान, आर जा ना शीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया, गुरमुख हर दर सोभा पाए, गुरमुख बिचों आप गवाए, आप तरे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख होमे चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मेल ना लागे, गुरमुख सहज समावणिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे सोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया, गुरमुख अनदिन शब्दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्द भगत करावणिया, वांझ गुरु है अंध अंधारा, जमकाल गरठे करहे पुकारा, अनदिन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा में दुख पावणिया, गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हिरदे बुठा आप आए, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर ते पावणिया, मांझ महला तीजा, एका जोत जोत है सरीरा, शब्द दिखाए सतगुरु पूरा, आपे फर्क कितोन घट अंतर, आपे बणत बणावणिया, हों वारी ज्यों वारी हर सच्चे के गुण गावणिया, वांझ गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया, रहाओ तू आपे सोहे, आपे जग मोहे, तू आपे नदरी जगत प्रोभ है, तू आपे दुख सुख देव है करते, गुरमुख हर दिखावणिया, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरमन विसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आख सुनावणिया, आपे करता आपे भुगता, बंधन तोड़े।

मेरा प्रभु भरपूर रहा सब थाई, गुर प्रसादी कर ही मैं पाई। सदा सिरे भी इक मन ध्याई, गुरमुख सच समावणया। हों वारी ज्यों वारी जग जीवन मन बसाया, हर जग जीवन निरभउ दाता। गुरमत सहज समावणया रहाउ, घर में धरती धौल पताला। कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुखदाता। गुरमत सहज समावणया, काया अंदर हो मैं मेरा। जमण मरण ना चूके फेरा, गुरमुख होवे सो हो मैं मारे। सचो सच ध्यावन आया, काया अंदर पाप पुन दोए भाई। दोही मिलके सृष्टि उपाई, दो में मार जाए एकत घर आवे। गुरमत सहज समावणया, कर ही मैं दूजे पाए अनेरा। चानण होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता। अन दिन नाम ध्यावणया, अंतर ज्योत प्रगट पसारा। गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया। ज्योति ज्योत मिलावणया, अंदर महल रतनी भरे भंडारा। गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख बण जे।